सबालिगे में सोच होगा सबालिगे ये ठाकर नहीं है सबालिगे में सो नॉर्मल सो सबालिगे योगे घिरी की नो नरेजिंगा योगी है सो सबालिगे योग वाला जोरिया नंखाया है नगिला नगिला सिसुराई नला की जहो वाला वाली की योग सबालिगे योग